0: बीच में दीवार सी क्यों है खड़ी, यादें अब नफरतों के पैमानों से क्यों है।
1: 98.5
2: 2000 FM